0: जय श्री वेवा।
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिन्म सुविशुद्धे सिलु सुविशुद्धतावे उल्पत बोहांसे में एहिन बोहांसे के आत्मनंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवत करण में अपि आयदि अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन वने येशुस क्रिस्तुन वहांसे के श्री शरीरय श्री रुधिरय बावट पत्वनु संदहाय उन्वहांसे दुख सहित मरणेट सिय कमेत्तेन पू कमेत्तेन पवरादीमेट पेर पूपे रागेन वहांसेट तुति पुदा एक खड़ा मिसे कीमिन सिय श्रावकेंट दुन सेक ओब सम मेन केन अनुभव करन्न सबबिन्म में ओबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीरयाई रात्रि भोजने वलंदु पशु उन्नांसे से कुशलानंद रैगने नावत तुति पुदामे से केमिन से श्राव के इंट दुन सेक ओब सम मेन गेन पाने करन सबविन्म में अभिनव वूद अनंत वूद गिविस में मागे रुदिर कुशलानाई पौकमाव संधा गौदेश साद सियल मनुष्य अनुदेश सादे वगरुन लबन्ने मास्ते किरीम पिनिस में सिदु करान्ने

समस्त शुद्ध बंतयान के राजेश्वरियनी अपने साया ज्ञाकल मैंने जम दोष